0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
4: पर हम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच
3: है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

बेगम अख्तर की आवाज में ये गजल आपने सुनी और अब आपको सुनवाते हैं हरिहरन और लेस्ली लेविस की आवाजों में ये गीत। लेस्ली लेविस का लिखा हुआ गाना, संगीत लेस्ली लेविस और श्री जयदेव का, एल्बम का नाम आत्मा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आशा भोसले की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, एल्बम आपकी आशा।

अलीशाज लव नोट्स, ये एल्बम का नाम है। अलीशा चिनॉय की आवाज, नितिन रायकवार के बोल, संगीत है संदीप चौटा का।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें, साहिर होशियारपुरी के शब्द हैं, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम दिल भी तू जान भी तू।

0: बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो केंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब आपको सुनवाते हैं वेणुगोपाल गोस्वामी की आवाज में ये पारंपरिक रचना, संगीत भी वेणुगोपाल का है।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: रीटा गांगुली की आवाज, संगीत विश्व मोहन भट्ट का।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति परवीन सुल्ताना और जगजीत कौर की आवाजें माया गोविंद के बोल खय्याम का संगीत एल्बम रजिया सुल्तान।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम का पहला गीत है आशा फिल्म से। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में लीजिए अब सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, आरडी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम बुलंदी।
1: Five hundred.

ब्रेक के बाद अब आपको सुनवाते हैं यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गानों को। लीजिए अब सुनिए अली बाबा और 40 चोर इस फिल्म का गाना, किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है आरडी बर्मन का।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल इस कार्यक्रम का अगला गाना अग्नि परीक्षा। इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, योगेश के बोल, सलील चौधरी का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: येसुदास और आशा भोंसले की आवाजों में लीजिए अब सुनिए योगेश का लिखा हुआ गाना। बप्पी लाहिरी का संगीत, फिल्म का नाम है अपने पराए।

0: गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: लिया छनकी के ना
2: छनकी छनकी।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों

0: संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गाना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और फिल्म का नाम हम पान।

लीजिए अब सुनिए हरजाई फिल्म का गाना। आवाज किशोर कुमार की है, विट्ठल भाई पटेल ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बंदिश फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

नमस्कार श्रोताओं, सुरीला सफर इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज की जो इबारत है, जो टेक्स्ट है, जो हमने विविध भारती के फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है, वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ भी लिया है और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचा दी है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, उनके लिए हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं। आज आपको कुछ सुनाना है, प्यार की दास्तान भी, दिल का हाल भी, पायलों के गीत भी और कहानियां भी। बाबू आना, तुम भी सुनते जाना, बाराती भी सुनो और बंधु मितवा तुम भी सुनो। सुनाना तो ये है कि ए मेरे दोस्त, तेरी यारी हमें जान से प्यारी है। इन गुलाबी कलियों ने भी हमारा रास्ता रोक कर यही कहा, यार हमारी बात सुनो। पर बात तो यही है कि अब कौन किसकी सुनता है। सुनना किसी को पसंद नहीं। कोई कहता है मैं क्यों किसी की सुनूं, पर सच तो ये है कि सुनना भी एक कौशल है। सुनना इसलिए है ताकि हम बोलने की तैयारी कर सके। जी हाँ, सुनना कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है और इसकी क्या आवश्यकता है, बस यही है हमारा आज का विषय। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज आपकी इस इबारत में जीवन का पूरा रंगमंच सिमटा है, जहां प्यार की दास्तान है, दिल का हाल है, पायलों की गीत है और यारी की वो मिठास है जो जान से भी प्यारी लगती है। पर इन सब के बीच सबसे गहरी बात यही है कि आज सुनना ही सबसे ज्यादा कठिन हो गया है। हर दिल कुछ न कुछ सुनाना चाहता है, पर सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि हमने सुनने को केवल बोलने से पहले का एक ठहराव समझ लिया है। जबकि सच तो यह है कि सुनना एक साधना है, एक कौशल है, एक प्रेम है। जब हम सच में सुनते हैं तो सामने वाले के शब्द ही नहीं, उसके मौन को भी सुन लेते हैं और तभी यारी, प्यार और कहानियां सार्थक होती है। इसलिए बोलने की तैयारी के लिए नहीं, बल्कि दूसरे के अस्तित्व को सम्मान देने के लिए सुनने की कला को सीखना ही आज के शोर भरे समय की सबसे बड़ी जरूरत है। एक साथी हमारी ये भी लिख रही है कि सुनने की इच्छा हो तो खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, पर जब कोई सुनना ही नहीं चाहे तो हजार शब्द भी बेअसर हो जाते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। सबसे पहला जो गीत है वो फरार फिल्म का गाना है, प्यार की दास्तान। ये गीत है लता जी की आवाज, कैफी आजमी के बोल, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए।

क्या करेगा सुन के जमाना, तुम सुनो तो कहे। जहाँ जी हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी खास व्यक्ति के लिए होती है, किसी खास व्यक्ति को सुनाने के लिए होती है, और जब वो व्यक्ति उन बातों को सुनता है तो दिल को सुकून मिलता है। एक हमारे साथी की ये बात की फरार फिल्म का ये सदाबहार गीत, लता मंगेशकर की मखमली आवाज, हेमंत कुमार के शांत संगीत और कैफी आजमी की बेहतरीन शायरी का एक अनूठा संगम है। ये गाना प्रेम के निजी और पवित्र एहसास को बहुत ही खूबसूरती से बयां करता हुआ गीत है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि किसी की सुनना सम्मान बोधक सूचक है, सुनना ही बोलने वाले को सम्मान देना होता है। सुनना एक कला है जो सहनशीलता और संवेदनशीलता का परिचायक है, खासकर अगर बातें दिलों की हो तो सावधानी सर्वोपरि रखनी चाहिए। बोलने वाले के संवाद चाहे व्यंग्यात्मक हो, कटाक्षपूर्ण हो, अनर्गल हो, असंवैधानिक हो, विरोधाभास हो या चुभने वाली हो, सुनकर ही अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। धन्यवाद आपका। चलिए हम अगला गाना अब आपको सुनवाते हैं। श्री 420 फिल्म का ये गाना है, मन्ना डे की आवाज, शैलेन्द्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है शंकर जयकिशन का।

बोलना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

अब एक सीधी सी बात हमारे मन में ये है कि अधिक सुनने के क्या क्या फायदे हैं और अधिक बोलने के क्या क्या नुकसान है, ये हमारा सवाल भी है आपसे। अधिक सुनने के क्या क्या फायदे हैं और अधिक बोलने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये आप हमें बता दीजिए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सुनना ही आगे जाने का मार्ग है, आगे जाके सुना हुआ ही हम बोल सकते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि बोलना अपनी बात कहना है, लेकिन सुनना किसी के दिल को जगह देना है। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जहां बोलने से पहले कोई सुनने वाला और चुप्पी में भी समझने वाला हो। एक साथी ये भी लिख रहे कि सुनना सिर्फ शब्दों को सुन लेना नहीं है, बल्कि किसी के दिल तक पहुंच जाना है। कभी कभी इंसान की सलाह नहीं, बस एक ऐसा कंधा चाहिए होता है जहां उसकी बातें बिना किसी शिकायत के सुनी जाए। सच तो यह है कि जब कोई हमें दिल से सुनता है तो आधा दर्द वहीं खामोशी में पिघल जाता है, कुछ जख्म दवा से नहीं सुन लिए जाने से भर जाते हैं। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज कहने सुनने की बात है तो कुछ लोग कहते रहते हैं, जरूरी हो या ना हो उन्हें सुनने की आदत नहीं है। कहने से ज्यादा सुनना बहुत जरूरी है ताकि कुछ उपयोगी या ज्ञान की बातें मिले। दूसरों से बात करते समय सोच समझ कर बोले, ऐसी कोई बात ना बोले जिससे दूसरों को बुरा लगे, मुझे सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए धन्यवाद। अगला गाना अब आपको सुनवाते हैं, ये गाना लता जी की आवाज में है, शंकर जयकिशन का संगीत है, किस फिल्म का गाना है ये आप हमें बताइए।

ये जो गीत अभी आपने सुना, ये ससुराल फिल्म का गाना है। बहुत कम श्रोताओं ने इस बात का जवाब हमें दिया है, लेकिन जिन्होंने दिया है सही लिखा है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सिर्फ अपनी ही बात लगातार बोलना और किसी दूसरे को नहीं सुनना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे को सुनना भी और समझना एक बेहतरीन संवाद की नींव होती है। बोलना और सुनना संवाद के दो अहम पहलू है, क्योंकि सिर्फ अपने ही लगातार बोलने से बातचीत अधूरी रह जाती है और एक अच्छा श्रोता बनने से बातचीत अधिक प्रभावशाली और संतुलित होती है। इसलिए अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ बोलना ही नहीं सुनना भी सीखना चाहिए। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि दिल अपनी दास्तान सुनाने को बेताब रहता है, पर दिमाग हमेशा ये सोचता है कि क्या जो सोचकर हम बयान करेंगे उसे उसी तरह सामने वाला समझ सकता है, कहीं वो कुछ और समझ लिया तो हमारे मन की बातें कहने का अर्थ नहीं रह जाता है। यही दुविधा हमेशा ही दिल और दिमाग के बीच चलती रहती है। कहते हैं कि कह देने से मन का बोझ कम हो जाता है, पर कभी कभी खामोशी भी मन की पीड़ा को कम कर देती है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। राजपूत फिल्म का गाना अब आपके लिए लेकर आए हैं। मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। ये तीन कलाकारों पर फिल्माया गया गाना है। कौन से कलाकार हैं ये आप बताइए। और हमारा जो सवाल था कि अधिक सुनने के क्या फायदे हैं और अधिक बोलने के क्या नुकसान हो सकते हैं, इस पर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी।

में दूरी बढ़ जाती है, पर ज्यादा सुनने से हम बेहतर श्रोता बनते हैं और दूसरे को समझने के साथ उसके मन की बात भी जान पाते हैं, इसलिए अधिक सुनना समझदार होने की निशानी है। और एक साथी ने तो ये बात की है कि मैंने तो एक कप चाय बना ली है और सुरीला सफर प्रोग्राम सुन रही हूँ। धन्यवाद आपका। चलिए अब बाबू आना सुनते जाना, ये गाना संगीत किसका है आप बताइए।

0: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना
1: ये सब है जाल इसका मालूम है हाल इसका
0: चोरी का है माल इसका धोखा न खाना
2: मौजी बोलो मौजी मौजी बोलो मौजी मौजी बोलो
0: बाबू आना सुनते जाना
1: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना
0: ये सब है जाल इसका मालूम है हाल इसका
1: चोरी का है माल इसका

लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी। तू जा जा ऐ जा जा जा मुंह धो के आ, तू जा जा अरे जा जा जा मुंह धो के आ।

0: लड़ना मुझसे वरना मैं दूंगी गालियाँ।
1: सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ, सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ।
0: रुक जा निकाल की मैं तेरा दीवाना,
1: जा रे तू पीत जाके गरम मसाला, तू जा जा घर जाके आलू।

जुमरू फिल्म का गाना, इसमें संगीत किशोर कुमार का। एक साथी की बात, पहले हर परिवार में रिश्तेदारी में कहानी सुनाने वाले हुआ करते थे, जो बड़े तन्मय होकर कहानी सुनाते थे, और कहानी अगर एक दिन में खत्म ना हो तो फिर दूसरे दिन शुरू होती थी, और हम सभी भी सुनते थे, क्योंकि कहते हैं कि अधूरी कहानी सुनने पर रास्ता भटकने का डर रहता है, इसलिए पूरी कहानी सुनना जरूरी है। एक साथी लिख रहे हैं कि बोलना अगर चांदी है तो सुनना सोना है। एक अच्छा वक्ता होने के साथ आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा श्रोता बनकर आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। ये हुनर न केवल हमें एक बेहतरीन इंसान बनाता है, बल्कि समाज में संवादहीनता की खाई को भी पाटता है। केवल सुनना एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें आवाजें हमारे कानों तक पहुंचती है। ध्यान से सुनना ये एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। इसमें हम सामने वाले के शब्दों के साथ साथ उसकी भावनाओं, लहजे और अनकही बातों, यानी कि बॉडी लैंग्वेज को भी समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए सुनना एक हुनर या कला कहा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वारंट फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत, दो कलाकार कौन है आप बताइए।

से कहता हूं कहिए जी। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक चुप। और ये आगे लिख रहे हैं कि आगे क्या है मैं भूल गई हूं, लेकिन कहने का मतलब ये कि किसी भी चीज की अति नहीं करना है, न बोलने की न चुप रहने की। चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं, सुजाता फिल्म का गाना, एसडी बर्मन की आवाज़।

सुजाता फिल्म का गाना सुनील दत्त और नूतन पर फिल्माया गया। एक साथी लिख रहे हैं कि एक प्यारी सी बात, कम बोलना कमजोरी नहीं, एक खूबसूरत समझदारी है। जब शब्द कम होते हैं तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है, बस उसे सुनने वाला दिल चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि सुनना अमूल्य वरदान है, भगवान की तरफ से सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है, सुनाना ये जरूरी नहीं है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि बिना सोचे बहुत ज्यादा बोलने पर वह बगुले वाली हालत हो जाएगी, मुंह से आया हुआ आहार जमीन पर गिर जाएगा। बगुला आसमान में चोंच में मछली पकड़ कर ले जा रहा था, किसी ने देखा और चिल्ला कर कहा, अरे बगुला सांप पकड़ा है कि मछली? बगुला सिर्फ सांप सुना, फटाक से बोलने के लिए मुंह खोला और मछली जमीन पर गिर गई। ये कहानी भी है और एक इसमें संदेश भी छुपा है। एक हमारे साथी की बात यह है कि कम कुछ सुनो और सुनाओ। मेरा मानना है कि यदि आप एक अच्छे वक्ता हैं तो एक अच्छे श्रोता भी बनिए, ये नहीं बस अपनी ढपली और अपना राग। तो ये बात इन्होंने लिखी है, धन्यवाद। और अगला गाना सुहाग फिल्म का ये गाना है, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और परवीन बाबी पर फिल्माया गया है। शैलेंद्र सिंह, मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

एक साथी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि सच कहें तो रेडियो से हमें सुनने का संस्कार मिलता है। हम 24 घंटे लगातार बोल नहीं सकते मगर सुन जरूर सकते हैं। शायद इसलिए कुदरत ने हमें दो कान और एक जिह्वा प्रदान की है। सुनना भी वास्तव में एक कला ही है। प्रकृति के नजदीक खामोशी से सुनिए तो सही, न जाने कितनी मधुर दिव्य आवाजें आपको अथाह असीम शांति और सुकून देती हुई महसूस होंगी। किसी फूल पर मंडराते हुए मधुकर के गुंजन, मंद मंद समीर में घुलती हुई रागिनी, बहते दरिया की लहरों की अटखेलियां की स्वर लहरियां, किसी गौरी की चूड़ियों की खनक और पांवों में बसती पायल के सरगम, कहने का अभिप्राय यही है कि अच्छा सुनने का कौशल हमें मानसिक अवसाद से राहत दिलाता है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि कई लोग कहते हैं कि मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, किसी को बुरा लगे या भला, पर मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। और एक साथी लिख रहे हैं कि इस समय मेरे ऑफिस में रखे रेडियो पर हाथ रखकर मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। मैं बचपन से रेडियो पर विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनता था, आज भी सुनता हूं और आगे भी अंतिम सांसों तक सुनता रहूंगा। और एक साथी हमारे ये बात लिख रहे हैं कि हमें तो

विविध भारती जो भी सुनाती हम चुपचाप सुनते रहते हैं और कहते भी हैं, लिखते भी हैं, क्योंकि विविध भारती हमारी अपनी है। आपके इस प्यार के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सावन भादो फिल्म का ये गाना सुनवाते हैं। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है बता?

एक हमारे साथी ने बहुत सटीक बात लिखी, लिखते हैं कि अगर देखा जाए तो हमारी सारी मन स्थिति सुनने पर ही निर्भर करती है। दूर बैठे किसी का फोन भी आ जाए और कोई अच्छी खबर देते तो हम खुश हो जाते हैं, परेशानी कम हो जाती है, सुख दुख अच्छा बुरा सब कुछ सुनने पर ही तो निर्भर होता है। सबसे पहले अगर कोई मनस्थिति को बदलने में सक्षम है तो वो हमारी श्रवण शक्ति ही है। वहीं किसी सुंदर भजन या गीत को सुन ले तो मन आनंद से भर जाता है। कितनी सही बात है ना कि सुनकर ही तो हमें मन को, हमारे मन को खुशी मिलती है, और कोई बुरी खबर सुन ले तो मन उदास भी हो जाता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सुनना, शब्दों को सुनना भर नहीं, उसकी आवाज में छिपी उदासी को सुनना है, उसकी खामोशी में ठहरे अनगिनत सवालों को सुनना है। सामने वाला जब अपनी कहानी कहता है तो वह केवल शब्द नहीं कहता, वह अपने भीतर की परतें खोलता है, अपनी खुशियां, अपनी शिकायतें, अपने अनकहे एहसास हमारे सामने रख देता है। इसलिए खामोशी से किसी को सुनना बेहद जरूरी है। चलिए अगला गीत अब सुनते हैं, रोटी फिल्म का ये गाना किशोर कुमार की आवाज़।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आजकल के वृद्ध माता पिता जिनके बच्चे बाहर हैं और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, घर में कोई बात करने वाला नहीं है, उनकी बातें सुनने वाला नहीं है, तो ऐसे में रिश्तेदार और पड़ोसियों को इतना तो करना चाहिए कि उनके पास बैठकर इत्मीनान से उनकी बातें सुने और उनको भी कोई साथी मिलेगा और उपयोगी बातें सुनने को मिलेगी। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज के दौर में प्रत्येक इंसान में जो एक चीज गायब दिखती है वो है सुनना। इंसान नहीं जानता कि सुनना भी एक तीर्थ है। ये विडम्बना है कि हर इंसान सिर्फ बोल रहा है, सुनना बिल्कुल अनचाही सी चीज हो गई है। एक सच जो इंसान नहीं जानता, जिसने सिर्फ और सिर्फ बोलने को तरजीह दी और सुनना छोड़ दिया, उसने अनजाने में धीरज, गहराई और रिश्तों का मोल खो दिया है। चलिए अगला और अंतिम गाना, उजाला फिल्म का गाना है ये, शम्मी कपूर और माला सिन्हा पर फिल्माया गया ये गाना।

यही था आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का अंतिम गाना, और आपने इस कार्यक्रम को धैर्य पूर्वक ध्यान से सुना और विषय को लेकर बहुत सारी बातें आपने लिखी, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आपको ये सुनाना चाहते हैं कि अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है। मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: भाग दौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

त्रिपुरा के पतवा सर के डोले मनवा कि हियारा में उठ तहिलो। अरे पुरुआ के झोंकवा में आई

0: के पतवा सरीखे डोले मनुआ की ही यारा में उठत हिलो गुरुआ के झोंकुआ में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सखी सहेली के लिए कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: സഹേലി.
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सहेलियों को चंचल वर्मा का नमस्कार
2: और सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का भी बहुत बहुत नमस्कार.
1: तो कैसी हैं मंदाकिनी जी?
2: भाई मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसी हैं?
1: मेरे भी हालचाल बहुत अच्छे हैं और हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी सुनने वाले भी खुश होंगे और अभी जो ये माहौल चल रहा है उत्सव का, तैयारियों का, इसमें लगे होंगे.
2: बिल्कुल बिल्कुल लगे होंगे. और देखिए उत्सव तो हर बात में है. अभी हमारे देश की जो चार बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता है उसका भी पूरा देश जो है

0: उत्सव मना रहा है ना। देखिए चार बेटियां 400 मीटर की चार चार जिम्मेदारियों को लेकर एक तिरंगे का सपना था उनका।
1: क्या बात।
0: और यही थी भारत की महिला जिन्होंने 4x400 मीटर रिले टीम की जो कहानी हमारे देश को दी है, जिस पर आज हम गर्व कर रहे हैं। किरण जी हैं वो, किरण पहल ने दौड़ की शुरुआत की और उसके बाद एमआर पुवम्मा, फिर प्राची चौधरी और आखिर चरण में विथ्या रामराज ने मोर्चा संभाला। और चंचल, शुरुआत में भारत तीसरे स्थान पर था लेकिन पुवम्मा ने रफ्तार बढ़ाकर टीम को आगे पहुंचाया और प्राची ने उसकी बढ़त को कायम रखा। और आखिरी 400 मीटर में विथ्या पर सबसे बड़ा दबाव था और बहरीन की धाविका लगातार करीब आ रही थी, लेकिन विथ्या ने आखिरी पलों में हिम्मत नहीं छोड़ी और कुल मिलाकर इन चार बेटियों ने 3:29.69 सेकंड में पूरा किया अपना राउंड और स्वर्ण पदक जीत लिया।
1: तो हम भी बधाई देते हैं इन चारों बेटियों को और देश की सभी बेटियों को जो इतनी लंबी दौड़ लगाने का, ऊंची छलांग लगाने का, पंख फैलाकर उड़ने का सपना देख रही हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे खूबसूरत बात यह है चंचल कि इन चारों की कहानी अलग है, संघर्ष बिल्कुल अलग है ना, लेकिन मंजिल एक थी। क्या? कि भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना। और ये जो जीत है हर उस लड़की के लिए, हर उस महिला के लिए, युवती के लिए, स्त्री के लिए एक संदेश है कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, अगर कदम रुकते नहीं है, हौसला बनाए रखती हैं बेटियां, तो मंजिल की रफ्तार बिल्कुल आप पा सकती हैं।
1: और इसमें सबसे बड़े साथ की जरूरत होती है परिवार के, तो बेटियों का हौसला बढ़ाइए, उनके हौसले को कभी भी गिरने मत दीजिए। और बता देते हैं कि आज किस विषय पर से बात होगी, तो महत्वाकांक्षा की बात होगी। और जब महत्वाकांक्षी होती हैं बेटियां या कोई भी, तो उनका भविष्य निर्माण भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। इस बारे में बात होगी। और आज साड़ियों का दिन है, यानी बुधवार के दिन हम किसी एक खास साड़ी की बात करते हैं, तो नंदना साड़ी की बात की जाएगी। और फिर हमारे जो श्रोता है किसी एक शब्द पर अपने विचार हमें देने वाले हैं, तो वो शब्द है प्रकृति। यानी
0: क्या बात है,
1: शब्द हमारा और विचार आपके।
0: बिल्कुल। तो प्रकृति के बारे में ये बताइए कि वो आप प्रकृति से प्रेम कितना करते हैं। अभी आप प्रकृति का डेफिनेशन तो लिख देंगे कि प्रकृति ये है, और हम आप प्रकृति से कितना प्यार करते हैं, आपने अपने जीवन में कितने पौधे लगाए, पेड़ लगाए कि नहीं, अपने घरों के आसपास आपने प्रकृति को स्थान दिया कि नहीं।
1: और प्रकृति का अर्थ हर जगह जाकर थोड़ा सा बदल जाता है। कहते हैं ना कि भाई आग की प्रकृति है जलाना, तो यहाँ भी प्रकृति का अर्थ बदल जाता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि तीन तरह की प्रकृति के शरीर होते हैं, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। तो प्रकृति का जो शब्द है वो वहीं कहीं कहीं उसका अर्थ भी बदलता है।
0: आप इसको बड़े डेफिनेशन में ले सकते हैं। अब हमारे श्रोता किस अर्थ में प्रकृति को लेकर अपने विचार लिखेंगे उसका हमें इंतजार रहेगा।
1: बिल्कुल। इसके अलावा विश्व कपास दिवस है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और गुड़ की मिठाई, यानी कि जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान उनका होता है, वो गुड़ की मिठाइयां किस तरह बनाते हैं, खाते हैं, इस पर बात होगी। लेकिन मिठाई की बात, और मीठा सा गीत ना हो।
0: बिल्कुल, ये गीत होना चाहिए।

0: हाँ जी, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा।
1: और हमारे जो साथी हैं सुनने वाले, वो भी हर जगह हमारे साथ होंगे। बहुत सारे संदेश वो हमें भेज रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं महत्वाकांक्षा और भविष्य निर्माण के बारे में। तो मंदाकिनी जी, महत्वाकांक्षा का मतलब होता है कुछ बड़ा सोचना या बड़ी अपेक्षाएं रखना। और देखा जाए तो एक सफल इंसान बनने के लिए ये जरूरी भी होता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर हम एक दायरे में सिमट कर रह जाते हैं ना, तो किसी बड़े लक्ष्य को पाना मुश्किल हो जाता है।
0: मुश्किल हो जाता है। और चंचल, महत्वाकांक्षा या आवेग दोनों ही जो है हमारी एनर्जी होते हैं। बस दोनों में फर्क इतना ही है कि महत्वाकांक्षा में एक दिशा होती है और आवेग जब आता है तो उसमें गति होती है। और जब गति बिना दिशा के हो जाती है तो भविष्य नहीं बनता, बिखर जाता है। और महत्वाकांक्षा अकेली भी खतरनाक हो सकती है। तो परेशानी कब शुरू होती है? तब शुरू होती है जब महत्वाकांक्षा कब और कैसे को भूलकर सिर्फ क्या चाहिए पर अटक जाती है।
1: बहुत सही बात बताई आपने मंदाकिनी जी। और इसी तरह की बड़ी इच्छाएं या महत्वाकांक्षाएं अगर आपकी हैं, जैसे भाई आपको इंजीनियर बनना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है या बहुत बड़ा बिजनेस करना है, आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, इस तरह की जो भी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, कई बार ये जिंदगी में बोझ भी बन जाती है।
0: बिल्कुल,
1: भविष्य आदमी भविष्य की तरफ एक कल्पना के चित्र में ही जीने लगता है। उसे लगता है कि जब वो मिल जाएगा तब मुझे खुशी होगी, और वो जो दिन है ना कि ये मिलने पर खुशी होगी या ये महत्वाकांक्षा पूरी होने पर खुशी होगी, वो दिन जिंदगी में कभी भी नहीं
0: आता नहीं है। क्योंकि हम वैसी मेहनत नहीं करते ना चंचल, उस दिशा में हम अपना कार्य कर नहीं रहे होते, केवल खामों की दुनिया में बैठे होते हैं। इसलिए निराधार जो महत्वाकांक्षाएं होती है वो हमें थकाती हैं, क्योंकि हम हर दिन खुद को असफल महसूस करते हैं। और आवेग जो है महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन है। आवेग का अर्थ ही है बिना सोचे तुरंत एक्शन रिएक्शन दे देना, प्रतिक्रिया दे देना।
1: और इसीलिए केवल आवेग में जो निर्णय लिए जाते हैं वो हमें बहुत ज्यादा भविष्य में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जैसे हर थोड़े समय के बाद अपने करियर की फील्ड को बदल लेना, जॉब को बदलना, दिखावे में आकर ईएमआई की सुविधाओं पर चीजें लेते जाना, गुस्से में इस्तीफा दे देना अपने नौकरी पर, किसी से रिश्ता तोड़ देना। तो आवेग में किसी भी तरह का निर्णय हो, चाहे वो निजी तौर पर हो या आपके कामकाजी तौर पर हो, ये आपको तकलीफ तो देगा ही देगा।
0: बिल्कुल देगा। और आपका जो एक हर्डल आपकी जिंदगी में हमेशा आती रहेगी आपके इस व्यवहार से भी।
1: जी,
0: ऐसी तमाम समस्याओं का समाधान यही है चंचल, कि महत्वाकांक्षा में अनुशासन को हम जोड़े। सबसे बड़ी बात है कि भविष्य न तो सिर्फ सपने देखने से बनता है और न ही जोश से बनता है। एक सूत्र याद रखें हम, कि महत्वाकांक्षा दिशा है, अनुशासन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है, और आवेग जो है वो स्पीड ब्रेकर है।
1: हाँ, यानी कि जब भी आवेग आए तो थोड़ा थम जाइए, रुक जाइए, अपनी गति को धीमा कर लीजिए। और महत्वाकांक्षा सिर्फ दिखावे के लिए ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है मंदाकिनी जी।
0: बिल्कुल,
1: असली महत्वाकांक्षा शोर नहीं करती, वो चुपचाप से रोज हमें जगाती है। क्योंकि हमारी अगर कोई सच्ची महत्वाकांक्षा है तो वही हमारा भविष्य बना सकती है, अगर तीन चीजों से हम उसको जोड़ दें, अनुशासन, धैर्य और भविष्य।
0: बिल्कुल, और भविष्य में कुछ अच्छे आपको नतीजे चाहिए तो अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ा छोटा कर ले, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। 5 साल का लक्ष्य सीधे न देकर उसे 6 महीने के टुकड़ों में तोड़कर आप तैयारी कर सकते हैं, है ना।
1: और कोई भी बड़ा फैसला अगर आपको लेना है, जैसे नौकरी छोड़ना है, कोई बड़ा निवेश करना है, किसी को गुस्से में जवाब देना, इन सब के लिए अपने आप को हमेशा 2 से 3 दिन का समय दे देना चाहिए कि चलिए थोड़ा रुक जाए, फिर ये काम करेंगे। अगर नौकरी छोड़ने का झट से मन में विचार आया तो नहीं, कुछ रुक जाते हैं, आज ही नहीं छोड़ना। कोई बहुत बड़ा निवेश करने का सोचा तब भी थोड़ा रुक जाइए। तो जैसे शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ बहुत जल्दी अप डाउन आते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो कोई भी बड़ा निर्णय है थोड़ा सा रोक लें अपने आप को, क्योंकि मनोविज्ञान भी कहता है कि 90% आवेग जो है वो 72 घंटे में मर जाता है। इसी तरह से कोई बड़ा नुकसान अगर हमारा होने वाला है तो उससे भी हम बच जाते हैं।
0: बिल्कुल, आपने सही बात कही। शेयर बाजार की तरह जो सेंसेक्स ऊपर नीचे होता है ना, उस तरह से हमारे विचार भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन अगर आपका फैसला जो है दृढ़ है तो वो कभी ऊपर नीचे नहीं होगा, अटल होगा वो इरादा। तो भविष्य बनाने वाले काम का 80% समय बोरिंग होता है, रोज वही अभ्यास है, वही बचत है, वही पढ़ाई है, लेकिन जो व्यक्ति इस बोरियत को सह गया वो ही आगे निकल जाता है।
1: बिल्कुल, हर इंसान सोचता है कि बड़ा आदमी बनना है, ये कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, ना ही फैंटेसी है। महत्वाकांक्षा होती है हमारे भविष्य का नक्शा बनाना। और जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और नियोजनबद्ध तरीके से उस पर काम भी करते हैं तो वही महत्वाकांक्षा है जो हमारा भविष्य बनाती है। क्योंकि इसमें क्या, कब, कैसे,
0: तीनों चीजें आती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही चंचल तूने। और पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा था?
1: क्या कहा?
0: जो हमारे कितने बड़े आइडियल है आज भी
1: सबके लिए किसी ना किसी तरह से वो प्रेरणा के।
0: बिल्कुल, उन्होंने कहा था सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो नींद न आने थे।
1: क्या बात,
0: मतलब सपना बड़ा रखो पर उसे पूरा करने के लिए रोज नींद कुर्बान करने की तैयारी में भी रखो।
1: बिल्कुल, और इसी तरह से हमें अगर इसे आसानी से समझना चाहें तो महत्वाकांक्षा हमें गाड़ी में बिठाती है और आवेग उसका स्टीयरिंग छीन लेता है और अनुशासन जो है वो हमें
0: मंजिल तक पहुंचा देता है। और इसलिए बड़ा सोचो पर आज के छोटे फैसले को हल्के में मत लो, क्योंकि भविष्य कल नहीं बनता, वो आज के आवेग पर काबू पाने से बनता है।
1: और देखिए हमारे साथी लिख रहे हैं कि महत्वाकांक्षा और भविष्य निर्माण, महत्वाकांक्षा वो जीवन को आगे बढ़ने के लिए दिशा देती है। सपने तभी सार्थक होते हैं जब उन्हें मेहनत, धैर्य और सही दिशा का साथ मिलता है। भविष्य अचानक से नहीं बनता, वो आज के छोटे छोटे प्रयासों और निर्णयों से आकार लेता है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण उन्होंने भी दिया है और आगे लिख रहे हैं कि साधारण परिस्थितियों से आगे बढ़कर उन्होंने भी अपने ज्ञान, परिश्रम, दृढ़ संकल्प के बल पर ही देश के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनने का गौरव भी प्राप्त किया था।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और उनका जीवन तो हमें सिखाता है चंचल कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, बड़े सपने और निरंतर प्रयास ही हमारा भविष्य बदल सकते हैं।
1: और भी आगे संदेश हैं?
0: बस अभी तो हमने इतने ही पढ़े हैं, एक गाना सुन ले ताकि कार्यक्रम की थोड़ी दिशा बदल जाए।
2: वो है कि मर कर भी तुमको जुदा

0: चंचल,
1: हाँ तो बड़ा प्यारा गीत तुमने सुनवाया अभी और हमारे श्रोता भी बहुत पसंद करते हैं इस गीत को, और साथ ही हमारी जो सखियां हैं वो पसंद करती हैं नंदना साड़ी को भी।
2: हाँ, और कई सखियां ऐसी भी हैं जिन्हें नंदना साड़ी के बारे में नहीं पता था। हमारी एक सखी ने लिखा भी है कि इस साड़ी के बारे में भैया इसका नाम जो है उन्होंने
1: पहली बार सुना है।
2: तो चलिए बताते हैं कि नंदना साड़ी या नंदना प्रिंट मध्य प्रदेश के कोई एकदम गुमनाम 400 साल पुरानी ये कला है, और ये साड़ी मध्य प्रदेश के नीमच जिले के तारापुरा और उम्मेदपुरा गांव की एक कला है, और इसे वहीं के खास समुदाय के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी से आज भी जिंदा रखा हुआ है।
1: तो ये नंदना जो प्रिंट है कोई बुनाई नहीं है चंचल, बल्कि हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग और डाबू रजिस्ट प्रिंट की एक तकनीक है। यानी पहले के समय में कुछ खास जनजाति की महिलाओं के मोटे सूती घाघरे लेंगे इसी प्रिंट के बनते थे, पर अब साड़ी, सूट, दुपट्टा, बेडशीट और सब इसी से बनने भी लग गए हैं। साथ ही नंदना साड़ी की खासियत यही है कि ये 100% प्राकृतिक और इको फ्रेंडली है। इसमें केमिकल नहीं लगता, इसके रंग बनते हैं नील यानी इंडिगो, अनार के छिलके, हरड़ा, अलेजरीन और लोहे के जंग जैसी चीजों से ये साड़ी बनती है, और कपड़े को नरम करने के लिए अरंडी के तेल और सोडा के पानी में इसको गलाया जाता है।
2: और देखिए ना, हमारी एक सखी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। वो कहती हैं कि मैं गुस्ताखी के लिए माफी मांगते हुए अपनी सखियों को इस सखी सहेली के मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगी।
1: क्या?
2: कि साड़ी के बारे

0: में मेरा ये कहना है कि गूगल से हमें सभी तरह की जानकारी मिल जाती है, लेकिन कुछ चीजों की जानकारी व्यक्तिगत रूप से हम सभी बांटेंगे तो वो ज्यादा परफेक्ट होती है। तो अगर किसी के पास इस टाइप की साड़ी या इस टाइप के कपड़े होते हैं तो वो अपनी बात को साझा करें, और ये बड़ी अच्छी बात लिखी है।
1: हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात, इन्होंने हमारी बात कह दी एक तरह से। हम भी अपने सखियों से अक्सर कहते हैं कि भाई आपके पास ये नंदना या कोई भी साड़ी है तो उसका जिक्र कीजिए। अभी भी हम कहेंगे अगर आपके पास नंदना साड़ी है और या आप कभी लेने गई थी, आपको पसंद आई, आपने किसी को गिफ्ट दी, तो उसका जिक्र अभी आप कर सकती है, तो हम उन्हें शामिल कर लेंगे।
0: तो ये जो साड़ी है इसका लॉट जो है वो लगभग 800 मीटर का होता है, और उसे तैयार करने में करीब करीब 18 स्टेप और 25 से 30 दिन की मेहनत लग जाती है। इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें कपड़े को गलाना, अरंडी के तेल में भिगोना, थोड़े से धुलाई करना, हरड़ा का पाउडर लगाना, बिछलाई यानी कि गोंद और मिट्टी की छपाई होती है ना, उसको रोकना, ब्लॉक की छपाई, नील में रंगाई, धूप में सुखाना, फिर अंत में धुलाई, और इतने स्टेप से होकर जब ये गुजरता है ना तभी कपड़ा जो है वो पक्का
1: होता है, यानी वो हीना की तरह हो गई कि पिसकर ही हीना जो है रंग लाती है ना। और नंदना में पारंपरिक रूप से चार मुख्य बूटे होते हैं और हर डिजाइन और मोटिफ का अलग मतलब होता है। मिर्ची का मतलब है तीखापन और बुरी नजर से बचाओ, तो चंपाकली का मतलब है कि इसे खास समुदाय की अविवाहित लड़कियां पहनती थी। अंबा का मतलब है कि इसे साड़ी और गर्भावस्था के समय शुभ माना जाता था। और जलम यानी बूटा का मतलब है समृद्धि का प्रतीक। तो आजकल इनमें अमरूद, यूकेलिप्टस, सागवान, नीम के पत्तों के इको प्रिंट भी बन रहे हैं।
0: और इस साड़ी में जो है रंग का विज्ञान और इसकी मान्यताएं वो भी अलग अलग हैं। नीले और हरे रंग जो हैं वो इसीलिए खेत में जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए होता है ताकि वो गंदा कम दिखे।
1: अच्छा।
0: और नील को सबसे शुभ भी माना जाता है, इसीलिए कारीगर भी ये मानते हैं कि गाय जो है वो नील का पानी पीती है तो वो ताकतवर बनती है, और नील के लगे हाथ से खाना खाने से पेट की बीमारियां भी नहीं होती। कुछ पारंपरिक मान्यता है।
1: अच्छा, ऐसा। तो ये साड़ी बनाते समय इन सब बातों का भी ख्याल रखते हैं। और नंदना साड़ी में जितनी बारीकी से काम किया जाता है तो साड़ी की कीमत भी उतनी ज्यादा, यानी एक असली हाथ की बनी नंदना साड़ी 2500 से लेकर 8 से 10 हजार तक की होती है। और पहले तारापुर उम्मीदपुरा में लगभग 100 से ज्यादा परिवार ये काम करते थे, और अब सिर्फ 8-10 परिवार ही बचे हैं, क्योंकि ये बहुत थकाऊ और समय लेने वाला काम है, और बाजार में इसका केमिकल प्रिंट भी मुश्किल से मिलता होगा, तो कम लोग अब इसको बनाते हैं।
0: हाँ, क्योंकि कई बार कारीगरों को भी लगता है ना कि मेहनत बहुत ज्यादा है और उसकी अपेक्षा में जो दाम है वो उनको नहीं मिल पाते, और इस तरह से जो बहुत सारी कलाएं हैं वो लुप्त होती जा रही हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो हम सभी को मिलकर इनको बढ़ावा देना चाहिए, और इसीलिए सरकार अभी से GI टैग दिलाने की प्रक्रिया में है और इसका जरिया बना रही है। बनवारी जरिया, पवन जरिया को राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 और स्टेट अवार्ड 2002 और 2022 में भी मिल चुका है। व्यवसाय, राजनीति, फिल्म जगत, हर क्षेत्र में काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो भी इस साड़ी को अपनी पसंद में शुमार करती हैं।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर है नंदना साड़ी। तो हमारी सखियां बताएं कि उनके पास नंदना साड़ी है भी कि नहीं।
0: तो हम एक गीत सुन लें।
1: हाँ?

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं।
1: बिल्कुल, तो चंचल बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस इन दिनों हम मना रहे हैं, विश्व कपास दिवस, और इसकी बड़ी महत्ता है। हम सभी जानते हैं कि ये दिन जो है आज के दिन खास मनाया जाता है, और कपास को सफेद सोने के नाम से भी हम जानते हैं।
0: हाँ।
1: क्योंकि ये सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों की रोजी रोटी भी है।
0: सही कहा मंदाकिनी जी, और इस दिन का आयोजन, इसकी जो पहल की गई थी वो 7 अक्टूबर 2019 को जिनेवा में हुई, जब विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय में पहली बार कपास दिवस मनाया गया था। और इसे शुरू करने की मांग अफ्रीका के 4 सबसे कम विकसित कपास उत्पादक देशों ने की थी। ये 4 देश हैं, बेनिन, बुर्किनो फासो, चाड और माली। और इन देशों ने कॉटन फोर भी कहा जाता है। आगे चलकर बाद में कोट डी या आईवोर भी इसमें शामिल हो गए।
1: हाँ बिल्कुल, 30 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी और एक प्रस्ताव पारित करके 7 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में मनाने का फैसला किया। और ये दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कपास दुनिया के 5 महाद्वीपों में करीब 75 से ज्यादा देशों में उगाई जाती है
0: जी।
1: और दुनिया भर के 10 करोड़ परिवार सीधे कपास उत्पादन से जुड़े हैं और लगभग 28 करोड़ लोग टेक्सटाइल सेक्टर में भी काम करते हैं।
0: बिल्कुल, जब भी हम कोई कपड़ा पहनते हैं तो इस

0: के महत्व को हम जरूर समझें कि बहुत सारे परिवार हैं जो इससे रोजी रोटी भी कमाते हैं और बहुत सारे कहते ना कि अलग अलग कड़ियों से होकर कोई कपड़ा हम तक पहुंच पाता है।
1: वही तो अभी आपने कहा ना कि देखिए करीब 75 से ज्यादा देशों में ये कपास होती है, कितना महत्वपूर्ण है ये और कितना रोजगार मिलता है इससे ना।
0: और बहुत सारे कम विकसित देश हैं उनके लिए कपास का कुल निर्यात 50% तक हिस्सा है। कपास से सिर्फ कपड़ा नहीं, कपास के बीज का तेल, पशु आहार और कागज भी बनता है। महिलाओं की भी बहुत बड़ी भागीदारी होती है इसमें। कपास चुनने उसकी प्रोसेसिंग में 40% ज्यादा काम जो है वो महिलाएं ही करती हैं। खाद्य और कृषि संगठन का हर प्रयास हर साल जैविक कपास, कम पानी वाली खेती और किसानों को उचित दाम मिले इसी पर होता है।
1: हाँ, और अगर हम अपने देश की बात करें भारत की, तो भारत और कपास का बहुत ही गहरा संबंध है चंचल, और इसीलिए ये दिन भारत के लिए बहुत खास है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। दुनिया की 26% कपास ही उगती है। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, ये मुख्य उत्पादक राज्य है और भारत की कपास को काली मिट्टी में उगने के कारण उच्च गुणवत्ता का भी माना जाता है।
0: बिल्कुल, कपास की खेती में किसानों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां होती है ना वो है जलवायु परिवर्तन, कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग, किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम दाम मिलना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं वो होती हैं, चुनौतियां होती हैं। इसीलिए विश्व कपास दिवस मनाने का उद्देश्य यही होता है कि कपास को सिर्फ एक वस्तु या पदार्थ या नहीं समझा जाए, बल्कि गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के साधन के रूप में भी इसको हम देखें। और वैसे भी संयुक्त राष्ट्र ने इसकी परमानेंट थीम है, स्थायी थीम जो रखी हुई है वो है कॉटन फॉर गुड, लेकिन इस साल इसे एक उपशीर्षक इसके साथ जोड़ा गया है, यानी 2026 के लिए जो थीम है वो है कॉटन फॉर गुड बिल्डिंग प्रॉस्पेरिटी थ्रू ट्रेड ट्रांसफॉर्मेशन एंड पार्टनरशिप। इसका मतलब है कपास अच्छाई के लिए व्यापार परिवर्तन साझेदारी के माध्यम से समृद्धि का निर्माण
1: करना। बिल्कुल,
0: तो चलिए अभी गीत सुन ले
1: जी।

0: मतलब ही ये है जो कुदरत
1: ने बनाया है जी। तो आज हमने शब्द जो दिया था हमारे श्रोताओं को प्रकृति, और श्रोताओं ने अपने अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिसका निर्माण प्रकृति, जिसका निर्माण इंसान ने नहीं ईश्वर ने किया है, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, जिसमें इंसान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियां, पर्वत, समुद्र, वायु, मिट्टी समेत प्राकृतिक प्रक्रियाएं सभी शामिल हैं। संस्कृत में प्रकृति शब्द में प्राकृ से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है मूल स्रोत या मूल आधार, जिससे कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और इसे कायम बनाए रखने में हम इंसानों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। प्रकृति ने अपनी गोद में बिठाकर हर जीव को इनकी जरूरत के अनुसार सुख सुविधा दी है, उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी हम इंसानों की बनती है। इंसान का प्रकृति से हो भाईचारा, यही है पैगाम हमारा।
0: क्या बात है, अच्छा संदेश है। और प्रकृति शब्द पर हमारे जो श्रोता है वो विचार अपने अपने प्रकट कर रहे हैं। एक संदेश में लिखा गया है, प्रकृति का व्यापक अर्थ है संपूर्ण भौतिक जगत, ब्रह्मांड, और इसमें पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, जीव जंतु, पर्यावरण शामिल है जो इंसानों द्वारा नहीं बनाए गए, प्रकृति प्रदत्त है। किसी भी प्राणी वस्तु का जन्मजात गुण उसका स्वभाव या प्रकृति कहलाता है। आग की प्रकृति गर्मी देना है। मनुष्य का शरीर भी प्रकृति के पांच बुनियादी तत्वों, क्षिति यानी मिट्टी, जल पावक अग्नि, गगन आकाश और समीरा यानी वायु से मिलकर बना हुआ है। साधु और बिच्छू का डंक मारना उसकी प्रकृति है, और उसके बाद साधु को उसी को पानी से बचाना, ये साधु की प्रकृति।
1: बहुत सुंदर बात, इन्होंने एक शब्द से कितनी ही बातें निकाल दी जिनका हमने कहा था कि आप किस अर्थ में प्रकृति को लेते हैं। प्रकृति, एक श्रोता लिखते हैं कि प्रकृति केवल हमारे चारों ओर फैले पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत और खुले आसमान का नाम नहीं है, बल्कि जीवन का मूल आधार है। मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, क्योंकि ये हमें बिना किसी भेदभाव के सांस लेने के लिए, हवा पीने के लिए पानी और जीने के लिए भोजन भी देती है।
0: मतलब प्रकृति कहते हैं ना कि हमारे स्वभाव को प्रकृति कहा जाता है कि भाई इस इंसान की प्रकृति है बहुत गुस्सा करना, इस इंसान की प्रकृति है बहुत नरम शांत है ना, तो हमारे स्वभाव को भी प्रकृति कहा जाता है। तो इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि प्रकृति के अलग अलग अर्थ अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हो सकते हैं। प्रकृति, एक संदेश में पढ़कर सुना रही हूं मंदाकिनी, जिसमें लिखा है कि प्रकृति केवल हमारे चारों और पेड़ पौधे, पर्वत, नदियां, खुले आसमान का नाम नहीं, बल्कि ये जीवन का मूल आधार है। मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, क्योंकि ये हमें बिना किसी भेदभाव के सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और जीने के लिए सबसे जरूरी चीज भोजन देती है।
1: बहुत अच्छा आपने लिखा है, कम शब्दों में गहरी बात लिख दी है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति बड़ा बेमिसाल मुद्दा है, प्रकृति के साथ रहना और बड़ा होना सभी को लुभाता है। शाम को अस्त हुआ सूरज के नीचे सिर पर पगड़ी बांधा गडेरिया जब अपनी भेड़ बकरियों को हांकता है तो बड़ा लुभावना लगता है। सुबह में सिर पर डोकरी लेकर निकलती है मलांच कितनी बेमिसाल लगती है, जब उसके हाथों में चूड़ियां और सिर पर धानी चुनरियां उड़ी हो, गली से जब वो जाती है नैनाभिराम लगती है।
0: एक संदेश में लिखा है, प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, हमारी माँ के समान है। यदि प्रकृति स्वच्छ सुंदर रहेगी तभी हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।
1: वहीं एक श्रोता का कहना है कि हमारे घर के आसपास पेड़ बहुत ही कम है, इसलिए मैंने तो छत पर ही करीब 40 गमले रख लिए हैं। नियमित देखभाल करती हूँ और इस तरह प्रकृति के बीच कुछ समय गुजार लेती हूँ। बिल्कुल अच्छा कहा आपने, गुजर जाता है आपका वक्त ऐसे तो।
0: और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि वो प्रकृति के बीच में आनंद लेते हैं, तो भाई इस प्रकृति की रक्षा सुरक्षा हमारे ही हाथों में है।
1: बिल्कुल,
0: और अब हमारे हाथों में है कि हम
1: गीत सुनवा दें।

0: अब हम क्या ढूंढने वाले हैं कि गुड़ हमने कहाँ रखा है रसोई में।
1: हाँ भाई, और इतने मीठे मीठे गाने सुन रहे हैं, थोड़ी सी मिठाई की बात ना हो, वो भी ऐसा मीठा जो हमारे सेहत के लिए नुकसान भी ना पहुंचे, वो थी गुड़ की।
0: गुड़, बिल्कुल वही तो हमने कहा कि गुड़ एक पारंपरिक और कहते हैं कि अपरिष्कृत जो है प्राकृतिक मीठा ठोस पदार्थ इसको माना जाता है, जिसे गन्ने के रस या ताड़ या खजूर के रस को उबालकर और गाढ़ा तैयार करके बनाया जाता है, है ना। तो ये गुड़ जो है सफेद चीनी के बिल्कुल विपरीत होता है, प्राकृतिक गुड़ है। इसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है और जिंक जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ मौजूद रहते हैं।
1: तो चलिए क्यों ना व्यंजन भी इस कहते हैं ना कि सेहतमंद जो चीज है गुड़ उसे ही बनाया जाए।
0: बिल्कुल।
1: तो गुड़ के शक्करपारे बनाने के लिए एक बाउल में एक कटोरी आटा ले लें और एक बड़ा चम्मच भर के मोयन डालें। एक बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर गुड़ को गला दीजिए ताकि वो पहले से ही पिघल जाएगा,
0: ठीक है।
1: और गैस पर जलाकर इसको या तो पिघला भी सकते हैं अगर आपने पहले से नहीं रखा है तो। इस पिघले हुए गुड़ के आटे से पानी को गूंदना है।
0: इसके पानी से आटा को गूंदना है, गुड़ के आटे से नहीं गूंदना है।
1: गुड़ का जो पानी हुआ है ना, जो गाड़ी गाड़ी चाशनी आपने बनाई,
0: लग रहा है कि फटाफट बनाऊं और खाऊं।
1: तो ये जो गुड़ की चाशनी बनाई, इसे आपने आटा गूंद लिया और कढ़ाई में गरम गरम घी या तेल डालकर उसमें धीमी धीमी आंच पर तलिए तो शक्करपारे तैयार
0: हो जाएंगे। वाह क्या बात, इच्छा हो गई है खाने की। और एक देखिए गुड़ की लापसी भी हमारे घरों में बनती है चंचल। गेहूं के दलियों को घी डालकर हल्का भूरा होने तक थोड़ा हम सेक लेते हैं, फिर उसमें गर्म पानी डालकर कुकर में एक सीटी दे देते हैं और गुड़ में पानी डालकर पिघला लें, फिर छानकर कुकर में बने दलिये में डालें, थोड़ा और पकाएं, देसी घी डालें, इलायची डालें, कुछ मेवा डालना चाहें तो डाल दें। पौष्टिक और स्वादिष्ट जो है लापसी तैयार हो जाती है और पुराने समय में गांवों में शादी ब्याह में भी ये बहुत ज्यादा बनाई जाती थी।
1: सच्ची में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती
0: मीठा मिष्ठान के रूप में लापसी ही बनाई जाती थी। बचपन में हमने बहुत जगह लापसी का सेवन किया है।
1: और जब हम कहते हैं ना कि जब किसी का स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो पेट को हल्का रखने के लिए भी खिचड़ी और लापसी इसी तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं, विकल्प होते हैं खाने के लिए। तो गुड़ की खीर के बारे में भी हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजा है कि हमारे प्रांत में छठी और जन्मदिन की नई बहू, जन्मदिन या हो या कोई नई बहू आती है तब त्योहारों पर चने की दाल, पूरी, गुड़ की खीर जरूर बनती है और छठ पूजा में भी जो गुड़ की खीर है वो बनाई जाती है और इसी से सूर्य देवता का भोग लगाया जाता है। तो बासमती चावल में दूध को पकाना है और जब खीर गाढ़ी हो जाए पककर तब गुड़ को अलग से पिघलाकर थोड़ी ठंडी होने पर ऊपर से पिघले हुए गुड़ को मिला देना है, फिर इलायची, नारियल और किशमिश मिला देने या जो भी आप मेवे डालना चाहें वो मेवे डाल सकते हैं। इसी तरह से स्वादिष्ट खीर तैयार हो जाती है। एक दूसरा तरीका इन्होंने बताया है कि गुड़ के पानी में चावल को पका सकते हैं क्योंकि चावल पकने में बहुत ज्यादा समय लगता है।
0: हाँ।
1: और जब चावल पक जाएगा तो ऊपर से गाढ़ा किया हुआ रबड़ी नुमा दूध है वो मिला दीजिए तो खीर तैयार हो जाती है। इस तरह की खीर में ये ध्यान रखा जाता है कि गर्म गर्म खीर में या दूध में जब गुड़ डाला जाता है तो फट जाता है, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ मतलब बनाते समय हमें ध्यान तो रखना ही पड़ता है, देखिए कि कोई चीज से किसी तरह का नुकसान नहीं हो जाए। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गुड़ के पुए भी बनते हैं।
1: हाँ।
0: अरे मन हो गया है पुए खाने का। हमें अपना बचपन याद हो है जहाँ हमारी माँ हमें गुड़ के पुए खिलाया करती थी। ये लिखते हैं कि आटे के साथ मिलाकर और जो मुझे पसंद है वो है पूरन पोली, जिसमें चने की दाल को भिगाकर

0: को उबालकर गुड़ के साथ घी में सेकते हैं और उसमें गुड़ डालते हैं। साथ में जो सूखे मेवे पसंद हो वो डाल दें। पेस्ट तैयार करें, आटे की लोई में भरकर घी से सेकें और जो बहुत ही स्वादिष्ट भी लगती है।
1: तो भाई इतने मीठी चीजों की बात चल रही है तो मीठा गाना भी तो होना चाहिए।
0: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: हाँ तो चंचल, हमारे श्रोताओं को भी इंतजार है कि आगे हम गुड़ के लेकर क्या रेसिपी बताने वाले हैं, है ना।
1: तो गुड़ को लेकर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि गुड़ हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, खासकर आने वाली पीढ़ियों के लिए। और कुछ मिठाइयां हैं जैसे गुड़ के शक्कर पारे, गुड़ का रसगुल्ला, ये इन्हें हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं इनको बड़े पसंद है। और चीनी के रसगुल्ले जो तैयार किए जाते हैं, इसमें चाशनी की जगह अगर गुड़ की चाशनी बना दी जाए तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। और गुड़ की तो हम पंजीरी भी बनाते हैं, और ये पंजाबी हैं शायद लिख रहे हैं कि पंजाबियों में तो ये बहुत ज्यादा बनाई जाती है। और गुड़ को भून कर इसकी पंजीरी तैयार की जाती है, घी डाला जाता है, भूना जाता है, पूरे तरीके से इसको बनाया जाता है, तो बहुत स्वादिष्ट लगती है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सर्दियों में गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं, तो गुड़ से बनाने से वो पौष्टिक हो जाते हैं। गुड़ के गुलगुले बनाइए और गुड़ के भजिए कह रहे हैं, और मीठे भजिए बना सकते हैं। गुड़ को गर्म पानी में पिघलाकर उसे छानकर उसमें आटा, नारियल की कतरन और इलायची डालकर घोल बनाकर तेल में पुए तल लीजिए। गुड़ और चने की दाल की पूरन पोली भी आप बना सकते हैं, है ना।
1: इसी तरह से जब भाई चाय का समय होता है ना, तो बहुत सारे लोगों को
0: 3 बजे चाय चाहिए होती है। इन्होंने मेरे मन की बात कह दी, मैं जब से सोच रही थी कि गुड़ की चाय जब हम पीते हैं, या कई बार चाय फीके रखते हैं और हाथ में गुड़ की डली लेकर भी सर्दियों के दिनों में हम लोग ऐसा चाय का सेवन करते थे। तो लिख रहे हैं कि ऐसे भी गुड़ की चाय बनाकर पी जा सकती है
1: जी। और बिना फटे स्वादिष्ट और परफेक्ट गुड़ की चाय बनाने की आसान सी विधि भी इन्होंने लिखकर भेजी है कि इसके लिए सामग्री चाहिए 2 कप चाय। आप दोनों

0: दीदियों के लिए।
1: हाँ क्या बात है।
0: एक कप पानी, दो कप दूध जो कि अलग से गर्म किया हुआ है, यानी कि पूरी तरह से औंटाया हुआ खौलाया हुआ ये दूध है। चाय पत्ती चाहिए 2 छोटे चम्मच, और चाय पत्ती की मात्रा आप अपने हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा कम कर लीजिए, आपको बहुत कड़क पीनी है तो ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें चाहिए गुड़, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ या पाउडर के फॉर्म में बनाया हुआ, 2 से 3 चम्मच चाहिए, या फिर स्वाद के अनुसार थोड़ा सा कम और ज्यादा भी कर लीजिए। अदरक चाहिए 1 इंच कुचला हुआ, हरी इलायची चाहिए 2, वो भी अच्छे से कुचली हुई या पाउडर बनाया हुआ। इसे बनाने के लिए एक पैन में या सॉस पैन में 1 कप पानी डालना है, कुचला हुआ अदरक और हरी इलायची डालकर पानी को अच्छी तरह से उबलने देना है। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें चाय की पत्ती डालनी है, 2-3 मिनट तक इसे भी उबालें ताकि अच्छा रंग और स्वाद चाय पत्ती का आ जाए। अब इसमें पहले से गर्म किया हुआ दूध है वो डाल देना है। दूध को हमेशा उबाला हुआ या गर्म किया करके ठंडा किया हुआ दूध डालने से चाय फट सकती है, ऐसा ही उन्होंने आगे लिखकर बताया है। और दूध डालने के बाद चाय को धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, फिर गैस को बंद कर देना है। बंद करने के बाद जो कद्दूकस किया हुआ या पाउडर के फॉर्म में लाया हुआ गुड़ है वो डाल देना है, फिर अच्छी तरह से मिला लीजिए, छान कर गर्मा गर्म गुड़ की चाय का मजा
1: आनंद ले सकते हैं। तो आपने 2 कप चाय भेजी है ना, ये 2 कप मुझे ही पीने पड़ेंगे क्योंकि चंचल दीदी जो है चाय नहीं पीती है।
0: तो चलिए आपके लिए डबल चाय हो जाएगी, लेकिन मैं जो है ना गानों की मिठास से ही काम चला।
1: चलिए फिर।

0: मन ही मन में लड्डू फूटे, अगर लड्डू गुड़ के होंगे ना तो ज्यादा सेहतमंद होंगे।
1: और अभी तो हम गुड़ के लड्डू की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि गुड़ की बात है तो लड्डू भी गुड़ के ही होंगे। गुड़ की बात निकली है तो एक श्रोता लिखते हैं, कह दूं कि दोपहर के भोजन के साथ गुड़ जरूर लेता हूं, भोजन के पूरा होने के बाद गुड़ के साथ एक रोटी खा लेता हूं और भोजन के अंत में गुड़ खाने से पाचन क्रिया आसानी से हो जाती है।
0: गुड़ ही गुड़ है,
1: गुड़ ही गुड़ है।
0: और आगे एक श्रोता लिखते हैं कि हम भी गुड़ और आटे के मालपुए खाने हैं और आपकी बातें सुनकर हमें भी लग रहा है कि हम इसे जरूर बनाएंगे।
1: वहीं एक श्रोता लिख रही है कि अब सर्दियां आने वाली हैं और गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में ये बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है।
0: तो भाई आप जरूर गुड़ के व्यंजन का मजा लीजिए, लेकिन कार्यक्रम का समय क्योंकि पूरा हो चला है तो हमें जाने की इजाजत भी दे दीजिए।
1: बिल्कुल। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
0: चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है।

0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
3: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
4: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
6: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
7: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
8: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
6: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
9: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे और कहते क्या थे, करते थे, और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।